0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: सरस्वती गीता
1: गीता ते सीता
0: अकल वो इकला अवंदिन अकलो अव सज्जी बजे।